या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे, कि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो, तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

चीखो चोरे दुन को ना गुल गुल एंड बुल बुल वाज दे रेडियो मन 88.4 खरक एंड ठांक थई जे दादी तू सिवरोर ते सी कुर्बा नास की हमदर यो सली बियाद अखबलो खजोरी दुन को बहिजमत के हाजिर सुनो सिफात का असमेड पाकिस्तान प्रोग्राम दफकुला राज सर है इंगड़ी जन वफाओ गला रेडियो मन करक स्टूडियो ने लाइव गणा मुदा आवाज तो जिदे हवा पे जबो मने बिल्कुल नेक पने गसीदा गा लाइव वोर वाई तो से समात लाइव दे रसे जे खुद हर वक्त याद दबो और इदुन की सरंग दी उम्मीद रा छे बिल्कुल वो ठीक ठाक जग जोड़ फिट फाट खुश खुशहाल खुश तबीयत है खुश मिजाज है इज्जत पुल मन के खपल जिंदगी खपल जवन छे दाइशा मजूस रहते रवि खुद हर वक्त याद दबो अशोक में हाँ से तकीदा टूटा बूटा आवाज उर भी अगा बिल्कुल सी चांग ची सुरा इलाके ने चांग मीनावाल में आवाज उर भी अगो तहां प्रोग्राम के डेढ़ वेलकम हर खले और खर के डेढ़ सड़ी मासी और सिफात कॉस्मेटिक दगा फिल्म फैमिली के जी वेलकम वेलकम जी वेलकम तरफ नहीं पेश की रोजाना पता था कैसरा गर्मा के यानी 11 से 12 बजे पूरे प्रोग्राम के मिले तो साथ मल करती है ठीक 12 बजे पूरी हुई और ईदन के हर सरा प्रोग्राम की शिरकत निकाल दिला रहे हैं और जनाब दे मैसेज दिला रहे हैं दुन की खालू तक वाले सिफर 332 96 दिला रहे काल का वाले से और मैसेज का वाले से जी और ईदन को देवादा खबर है वह कला तो से मोबाइल नंबर तक हाँ तो उसे मैसेज करवाई ब्याह बेटा आरके दाम वाली कैसा मोबाइल बिल्कुल मोबाइल नंबर में टीम प्रोग्राम के मोबाइल नंबर में आगे तदा आरके

ओके जी, फर्स्ट मैसेज कर रहा था नजीर अच्छा तो सिर्फ मैसेजेस मंदीम वही जी आई एम हिना अफरीदी सलामा मैं वर्का एंड सम गर्ल था ओता अच्छा ओके जी डेड सलमुना में अच्छा ओके जी हिना अफरीदी हो रखे यू जहान मनना है भाई जी हाय राज भैया आई एम हिना अफरीदी भाई अच्छा ना हो रही शो ना हो रही ओके जी हिना यू जहान मनना हिना अफरीदी

जी अस्सलामु अलैकुम एंड अस्सलामु अलैकुम। बिल्कुल सुबह डुबर तारीख तुझ पे हिदमत के हाजिर छो और मई लरम जी तुझ टूल ठीक ठाक हुई आओ दिन लो जिंदगी ने बा फंदनो मजे हो ले थोड़ी मीन वालू था प्रोग्राम के डेर ज्यादा हर कले भी यही चरते चरते के रेडियो अमन आवाज हो रहे थे शी और मई दे जी सब हुए सेहत पर जमो के बवाए

0: हाँ जी
1: अच्छा जी प्रोग्राम के मैसेज हर रोज़ दी प्रोग्राम से मैसेज जरूर से मिलेगी देन लो जी कॉल सीधा वहाँ से मिलेगी प्रोग्राम की

थैंक यू रखी पर्चे ब्याह मैसेज खड़े दे तमाम नए और पुराने लिसनर को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सईदा वेलकम कहता हूं तरकीज भाई सईदा डेर अजिया तो मनाना थैंक यू सो मच। अच्छा ऑफिशियल नंबर शिकम दाए दाग दे 0345 ठीक था 0345 933 2580 यानी 0345 933 2580। अच्छा जी सलाम वजीरों के खान मैं कायनात वजीर फ्रॉम कमर कली तारिक मड़ा दान दाजे दुमरा खोश दाई। अच्छा सही तो डेरा जिया तो मन है ना वैसे ठपेर तब लेके यो जहान बनना कायनात वजीर मैसेज कवले आओ देने लवा टपे फरमाइश इकड़े दाए बस बाखेर की बात बस अंदर अप लेके आऊं दावे तो से ठोले पनों बंदी भी अरे अजिया तो मनना यो जहान मनना लोया खास छे रखी पटक मैसेज करे दे यही कहना छे। अच्छा जी दा मैसेज दोबारा दे कड़े रिसेंट कड़े दे डेरा जिया तो मनना जे मैसेज दे वको पसबर सबर में रशीन शो नोर में ताकत दसबर निश्ता मड़ बशमा खाजी ठेरा मन रखी फटाक

शिफा कंपनी, शिफा तिल, पिशावर, बन्नू लकी, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवा थोरो निशान वाला खुजिफा कंपनी शिफा तिल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओस उस गंजे शवी भी याए दसर वेख्तान गुरजीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तिल पखपल सर बांधे मालिश की नो दद पसरबो दोबारा नवी वेश्तान पैदाशी शिफा तिल वेश्तान गुरजवल बंदवी वेख्तान गण औ उजद कवि देसर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवि जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवलेशे 0331-397-36-36 और बल नंबर दे 0335-352-33-33।

0: लाइव कॉल हर तकवाल ऐसी लाइव कॉल नंबर दई 0330-0344-717 यानी 0300-0300-3300 नंबर जो सर बिया लिखे 0300-0300-3300 स्किन पॉलिश द खुजिफा कंपनी जरूर इस्तेमाल कि तुसे ता डायरेक्ट स्पिन वाला ही मिला उसे डायरेक्ट मुझे की मदु पलास में नटर से शे लूसो मख हर जिकाय आगाजी छे पकीम जी बुंदे तुसे लगा वल गुड़े यो नो आगाओ पलास स्पिन जलास में नटर से या पर देना काम वाक से बिल्कुल स्पिनीजी उखशलाई की जी उजी दा वक्त यू कलर हर सरा दा या हगा सरा खा खबरे आतरे कभी जी सुखते किम जिने कॉल कड़ाई दे जी अस्सलाम वालेकुम आमना ट्रेलर फ्रॉम डूम मेलम न कचे द्वे द्रे नंबर न लगे आवे हां
1: बिल्कुल हर मैडम मिलावन सिस्टर
0: के हां शाम मिला वेदना ना ना
1: आनंदना शॉप सिस्टर के बिल्कुल दर अगर की मिलाओ शाम
0: हाँ नो डायरेक्ट पर वाला से जाओ
1: मैं
0: कोशिश तो रखो डेर सा मिला भी जी शानो रशा ये तबियत ते शदा एवरेज दे शाते रखना
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: पे इंतजार करेंगे तो शायद पे इंतजार करेंगे तो
1: शायद
0: इंतजार देखो हाँ अच्छा पे इंतजार इंतजार स्टडी है शायद
1: सही
0: दो
1: बिल्कुल
0: जी सलोमिना पास का
1: हजरतमेंटर मेडिया

चीज ना बा ते तुसी उसो लाइव कॉल द प्रोग्राम हिस्सा शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम हिस्सा जुड़े भी जी पर 0330-344-717 यानी 0000-3-7-7 उवो दिमिश दलायो काल नंबर बिल्कुल रुशई काल रुतो के और दे प्रोग्राम हिस्सा जो से कुमकली पकु मेला का पकु मलत के दा वक्त दा प्रोग्राम और विदेश आओ शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान ना तुसे सुमरा मुतमैन शिवी है दा प्रोडक्ट तुसे इस्तेमाल करी सुमरा मो इस्तेमाल करी और सुमरा

दरमान होम्योपैथिक सेंटर करक कचर ततासो पद से मरस के मुब्तिला ये किपा आगे के बवासीर फेस्टुला यानी खूनी दाना प्रास्टेट द गुर्दे पत्री द त्रिहि पत्री थायराइड ग्लैंड यानी कदुगाड़े रसूले ट्यूमर और कुन्निसा और दस्तरगो पर्दे छिपनोरो जायुनों के डॉक्टरानो तास्ता द ऑपरेशन वेलिदी नुतासो राशे दरमान होम्योपैथिक सेंटर था के अल तक की डॉक्टर मुस्तफा कमाल आर एच एम पी डी एच एम एस डी आई होम डी एस सी बी एच एम एस द होम्योपैथिक द दुनिया यो तजर्बाकार डॉक्टर बतासो इलाज बगैर द ऑपरेशन द मेडिसन पर जरिया बांधे कई

मैं हूँ आसमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार।

हाजी प्रोग्राम बहुत सुना वाला ठीक थर दो लसे बजे पर रिवी आओ दे प्रोग्राम के तो सर लाए से कॉल कवले से मैसेज कवले से कॉल कॉल दो पर डायल कवले से 09272912922 यानी कि पीटीसी नंबर डायल कवले से आओ देने लवा मैसेज हाँ कवले से मैसेज तरीका हाँ दे दे रहा सोना मोबाइल के बलोट से राइट या क्रिएट ऑप्शन था चार तक के तो मैसेज लिखाई आखिर जैसे बलोट से अलग बोली के गठ हरूफ से R A K चिकल हम बोली के बिया बोवेर के स्पेस स्पेस बात खपलनो मखपले इलाके नो बिया वैसे इनके पर 85831 है यानी कि 85 83 बांधे

सही ना बिल्कुल कॉल चुकम द कॉल शेप 0927291292 बने ओ मैसेज चेकिंग दी दा बिल्कुल कवई 8583 बने आर एक वाली के बस पेस पल्लो मुखपले इलाके नो बयावेसन कवई 8583 बने यानी कि 8583 बांधे अच्छा जी बिल्कुल लुकमान लला जी किम दे हां आगा प्रोग्राम और भी आओ लुकमान लला डेरा ज्यादा मनना यो जहान मनना आओ युवा संदर्भ बदर तो प्ले कहो सही दो नो डेरा जी तो मनना को बिल्कुल लुकमान लला जी किम दे आगा भी चीज हां प्रोग्राम और वो नौ डेरा डेरा मना ना लुकमान लहा चुकम दे रेडियो लगे वाले दासे पट पट प्रोग्राम और भी डेर दासे मशरूम चिकिम दी के ना अगा प्रोग्राम और ही और रेडियो वक्त नहीं बोली भी नौ आगे ठो लो डेरा जिया तो मरना को चाह हाँ रेडियो लगे वाले दा इन्हीं रेडियो ओमन करके लगे वाले प्रोग्राम देते मने और भी अगे ठोलो डेरा मनना कवि डेर खुबदा से भी कहना चाहिए चार रेडियो लगे वाली वो दिश भी वो भी और डेर दस जब एक चीवी वो जो चाहता खूब वर्सी कहना आगाद दास वो किसी जान दे पर दा सरा चाय चीके मदो दादा भाग की जरूर मजे दादा चेसरे चाय सरा खूब चुकम देवर सरा लोट सी यह वह खूब ने दर्शी शाह

अच्छा जी बिल्कुल डोल बतो से एंजॉय करे भी और सर दिले मामा गोरा ख्याल कवा तो रश्पा देश पता न लगे शी आसे ना शेर तो की फ्रेंड ऑफ द शान बिल्कुल डोल में एंजॉय कर

0: अच्छा जी कॉल तो रहता प्रोग्राम से कॉल से मिले भी 0927291292 बने कसी लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो अस्सलाम वालेकुम
1: ना
0: खबर खुद ठीक था गोरा माशाल्लाह जी कम दा मशरून भी कहना आगा खुला अक्सर दस भी मतलब लखा बुढ़ा भी खा मखा माशाल्लाह अवल खुदा चे सुमरा मशरून दी बुढ़ा गोन दी लतला सेहत बने रोग औ खलरी के ना चिकला हम मतलब दा से सब मतलब गैदरिंग या सिवी के ना नो बे चिकला यूनिम दा से मशरू भी चागा लश की मतलब लगा नूर को मतलब उम्र युत भी हो चिकला दई मतलब उचत सी के ना ब्या अथान डेर जबरदस्त का वाला सी के ना नो बिया मतलब आगा तानी देर खान के भी मशरून खुदा सी के ना मशरून दी के
1: ना
0: बिल्कुल आ बाकी कर सी के ना
1: सरंगे
0: जे जी लवंगीन पे खेर रोगले लकी मरबत ना नोट सही क्या वर्द शादी रगड़ा
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: बिल्कुल दास बस प्रोग्राम और भी नो सोच और बंदे कड़े भी चिदा हो चे लवंगीन रोशी नो आगे तो बरबा लंगई हा मखा उखलो खबर बिल्कुल सही तो बस दाई वो चुकुम दे के ना खाम खास सब सब कवि आओ खाना
1: मोबाइल द माइक दिखाई खा रो पो
0: मतलब सफा
1: देखा
0: ना सफा रेडियो सफा नर्सी
1: मुसीबत
0: को सफा दर्सी कहना रेडियो को मतलब दल्द को गुस्सा मसला ना वो तो सर मो पख्याल मसला हुआ
1: मोबाइल
0: था मतलब तू सर मसला वा शाह सही जी जी जी बिल्कुल दास दे शाह लवंगीन दार तो हुए कना चिर खफ शव है चाह खफ कड़ाई कना
1: ना होता रहो पर जिंदगी दे खामा का दाखा पर रहती उसका जो दुआनी मो तेरा करी वाड़ी कुलाई मो तेर कराई दी
0: शाह
1: वो नम सा पोदा से तुझे कसुक के खपा कभी वानी मा उबरे हाँ
0: खबर हो सही दो
1: मारवे दलिया नवा
0: सही
1: खबर ना कहना
0: सही सही जी जी जी बिल्कुल दस लवंगीन सही खबर दो लवंगीन डेर मनना चाहिए प्रोग्राम की कॉलो को नूर चाह सलाम दुआ लवंगीन यो जहान मनना कॉल को वाले सही वालेकुम अस्सलाम डेरा मनना बिल्कुल लवंगीन लकी मरवस नहीं कॉल करे वो डेरा डेरा मनना कसी कॉल बने चबल सुख दिखेम जना दे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम खजी तू सब नर्द रिमी दोबारा कॉल कवली शे डेरा डेरा मनना किसी कल मैंने बलसो को दिखे मना दे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम السلام علیکم جی سو خبر کی کم جنا آواز کٹ کی جی ہلو آواز کٹ کی جی ہاں جی بلکہ تو سے کال چکم دے ڈراپ شو داس سے نہ کال کوئی چلتا کہ سگنل فل وی آواز کٹ کے دو کسی کال بنے بول سکتے کم جنا دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہاں جی بالکل تو سے کال ملو شو ہوئے دے صحیح تو سوز موت نر دیمی دوبارہ کال کو ولی شے اچھا جی میسیجز چکم دی کنا دا وہاں سے پروگرام کی شے ملو آگے دوبارہ بلش کی انتظار کے وے چاو دکھن دینا میسیج کرے دا پروگرام کی ٹول شاملی جی

0: जी थैंक यू कॉल कोले डियर रजिया तो मनाना प्रोग्राम की दी कॉलो को यो जहान बनाना पसंद रहा खा महा कला कला दस संदर अभी के ना बाधराना संदर दे हुए ला हो सोच रुबांदे हुए जिसम है हुए डेरा मनाना जी कसी कालवन इस को दिखेम धन दे अस्सलाम वालेकुम जी सुख खबर है क्यों क्यों देना सुखो हाँ जी खीरा दवड़ा खबर है क्यों कम देना खबर है क्यों वजीरस्तान ना कम वजीरस्तान ना शिमाली वजीरस्तान ना का जनूबी वजीरस्तान ना अच्छा शिमाली वजीरस्तान ना सही प्रोग्राम की तरह हर किली भी सरंग शाही के ना आओ अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम और वे रेडियो को चार के भी दा रेडियो बदे खरो पे भी
1: मोबाइल
0: लगा दो तो सही वाला शाना वो उसको बिल्कुल ठीक था सफा दे क्लियर दे और बस की दिशी मोबाइल की दिशी हुई या तसब ने और वे अगे किसम मसला भी सही था शाह शाह सही सही बस सही था गोरो सीधा वेले मसला के भी हो लकी मरवत ना मुख्तलिफ जमीन बेच वो सफा दे और बस पता नश्ता तो सर वे लेंदा वो सफा शाह शाह ठीक शाह सही था डेरा मन ना चिकॉल दे वो सही था ओके लाफे डेरा मन ना

और वही कहना चाहिए नंगर बांधे का सुबह में स्टाफ सर पंसीता खेज वो खेजवी में अच्छा जी सही था खेजवी में डेरा ज्यादा मनना रखी पुरुषक मैसेज कर डेरा डेरा मनना अल्लाह दी प्यार वाला जनाना मशरूम जड़गे में पजड़ा दरपसे मरीना माशाल्लाह डेरा मनना रखी पुरुषक

हजी नेक्स्ट तरक भाई खफ्स मोबाइल में वेथ वलग वो मोबाइल में वेथ वलग वो मोबाइल में वेथ वलो गेश के में वेथ خبر تلي كليدو سم باد باد يرتا وقتل باي زخوس اچھا جي